रे गावन तुदनो खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कार कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई।

कहो फूल राजा वह बैठा, कहो सिमट प्यो संकरी कैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए चम भव, आद जुगाद स्वरूप से हम भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार सिख संगरो, दुष्ट जे तुवट उत्पाता, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणकाता। जे अस्तो जितव सरणी परे।

दोख ते लिहो बचाई सवैया पाए गहे जावते तुमरे तावते को आंख तेरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान ने कह मते एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा।

तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेदर आलम निरंकार निरुपकार निर्लंबो आद अनिल नाद संभता का मूढ़ उचार भेदा जा को भेद न पावत भेदा ता को कर पानन मानत महामूल का भेद न जानत महादेव को कह सदा सिंह निरंकार का चिंतन है पे वो आप अपनी बुद्ध है जेती वर्ण पहन पहन तो तेती तुमरा लख ना जाय पसारा के बसा पसम संसारा एक रूप न उस रूपा रंग पहराव के पूपांड झेर से तरीकी ने तुझे खान बहु रज दीनी कहूँ पूरा जा बैठा कहूँ सं कहो संकर कैठा सगे सिर दिखाए चम पव आज उगास रूसियाँ पव रक्षा मेरी तुम करो से खुबा सिख संघरों दोष जित उठ पाता सकल मलेश करुण का ताज अस्त तो शरणी परी तिनके दुर्ग दुग्ध हवै मरी पुरख जन भग परे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याही है ता के काल निटने आए हैं रक्षा हुई ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टेद काला कृपा धिर तन जाय निहर हूँ ता के ताव तन कमो हर हूँ रिस्त कर हूँ सब हुई दुर्छा शव कन कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फाते ताहि उबारा जिन नर नाम त्यारो कहाँ दार दुष्ट दो तेरा खड़के तुम्हें शंति।

कछु ना जानी चित जन का हिर लया माया बुन पहिरवानी कह ना गुरु बाजो हर कची वाणी गुरु का शब्द रता ना हीरे चित जड़ा उस शब्द रत जित बन लागै उस माओ शब्द सेती ही शब्द रतन जित मन लागै हुआ समाओ शब्द सेती मन मिला सच्चा लै पाओ आप हीरा रतना भजन दे बुझाए कहे नानक शब्द ना हीरा चित जड़ा उसी शक्ता उपाय का करता आपे हुकुम रताए आविखे गुरमुख सब जाए तोड़े बंधन होए मोक्षा मन बसाए गुरमुख जिसनु आप करे सोए कसल बलाए कहे नानक आप करता आपे हुकुम बजाए सिमर शास्त्र पुर पा विचार दे दत्तै सार न जानी दत्तै सार न जानी गुरु बाजन दत्तै सार न जानी तेहि गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन बिहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन हर मन बसिया बोले अमृत बाणी कहे नानक सोत पाए जिसनु अंदन हर लागे जाग तरण बिहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो के मनो बसारी है मनो को बसारी वरदाता जगन में हर पहुँचावे उसनो को पुन सके जिन अपनी लव लावे अपनी लव आप लाए गुरु सदा संभाली है कहे नानक वरदाता सो को मनो बसारी है जैसी एक नदर में तैसी बार माया माया गुण सभी को जही करता खेर चाया जान से पौना त जमया परवार भला पाया ले शुरकी लगी तृष्णा माया मरवताया ए माया जित तरवेश्वर मुँह बजा पाओ दूजा लाया कहे नानक गुरु प्रसादी सहज बजे सहसा पाणा तज मैं परिवार भला पाया ले शुरकी लगी तृष्णा माया मरवताया ए माया जित तरवी सरम बुझ पाओ दूजा लाया कहे नानक गुरप्रसादी जना लिव लागी तिन्नी बिचे माया पाया हराप मूलक है मुल न पाया जाय मुल न पाया जाय किसे बिटो रहे लोक बिलड़ाए ससगुर जी मिले तिसनों सुसों पिए बिचों आ बजाए जिस दा जियो तिस मिल रहै हर बसै मन आय हरियाप मूलक है भगत ना के नानका जन पल्लै पाए रास मेरी मरमन जारा रास मेरी ही मन बन जा रहा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जप्यो जियो लाख हटियो दिहाड़ी तन तन्ना मिले जना पे भाणा कहे नानक रास मेरी मन हुआ बन जा रहा ही रस ना तू रस राच रही तेरी प्यास न जाए होट गिदा जिच रस पल्ले न पाए रस पाए पल्ले पी रस भोर न तृष्ण लागे आए एहो रस करमी पाई सतगुर मिलाए जसे आए कहे नानक हो रंद रस सभी सिरे जान वसा मन आए श्री रा मेरिया हर तू मैं जोत रखी ता तू जग मैं आया हर जोत रखी दुद्विता तू जग में आया रापे माता पे पिता जन जीव पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया तो चल तो हुआ चल तरी आया कहे नानक श्रेष्ठ का मूरचया जोत राखी ता तू जग में आया मन चाओ भया प्रभागो सुनया हर मंगल का सखी गिरे मंदिर बनया हर गाओ मंगल सखी सोग दुख न व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना बिर जा पेंत बाणी गुरु शब्द जानी हर डार भोगो कहे नानक प्रभु आ मिलिया करण कारण जोगो कहे नानक प्रभु आ मिलिया करण कारण जोगो हे श्री रा मेरिया इस जग में आए कह के तू कर्म कमाया के कर्म कमाया तो श्री जा तू जग में आया जिन हर तेरा जन रचया सोर मन बसाया गुर प्रसादी हर मन बसया गुरु लिखया पाया कहे नानक के शरीर प्रवाण हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया कहे नानक के शरीर प्रवाण हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाए नेत्रो मेरे हर तुम्हें जो तरी हर बिना वरना देखो कोई हर बिना वरना देखो कोई नदरी हर निहलिया ये वे संसार तुम देख दर का रूप हर नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखारी कह हर बिना वरना कोई कहे नानक नेत्र दसे सतगुर मिले दिव दृष्ट होई हे श्रवणो मेरे हो सच सुनै नु पठाए सच सुनै नु पठाए शरीर ला इसनु सतबाणी जे सुनी मंतन हरिया हो रस न रस माणी सच लख बडाणी ता की गत कही न जाए कहे नानक अमृत ना उसनु पुत्र हो सच सुनै नु पठाए हर जियो गुफा अंदर रखै बाजा पुण बजाया बजाया बाजा पुण नौ द्वारे प्रकट की दसवां गुत रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी किन दसवां द्वार दिखाया तहने रूप नाओ नाम निद तिसदा अंत न जाई पाया कहे नानक कर प्यारे जियो गुफंद रख वाजा पुण बजाया हे साचा सोहेला साचा कर गावो गावो ता सोहेला कर साचा जिथे सदा सत्यावे सचो तैजंद पावे गुरु मुझ न बुझावे सबना खसम बख्शे सुन पावे कहे नानक सा सुहिला सचै कर गावे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर है भर पूरे बिन बंत न
ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

दर्शन देख जी मां गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा यह बिनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेरे सुखो टल गुर सेवी है अहनस सहज सुभाए दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाए तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिनै सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिनै सगल वसता कै